शुरू होगा। एप्लीकेशन फॉर्म, एक्सप्लेनेटरी नोट्स और इंफॉर्मेशन लीफलेट 1 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक अवेलेबल रहेंगे। फॉर्म आप अपने बच्चे के किंडरगार्टन या किंडरगार्टन कम चाइल्ड केयर सेंटर से ले सकते हो, होम अफेयर्स इंक्वायरी सेंटर्स, रीजनल एजुकेशन ऑफिसेस या एजुकेशन ब्यूरो के स्कूल प्लेसेस एलोकेशन सेक्शन से भी ले सकते हो। डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन नोट्स एजुकेशन ब्यूरो की POA वेबसाइट से मिल जाएगी। कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ 21 और 25 सितंबर 2026 के बीच स्कूल आवर्स में अपने चॉइस के एक गवर्नमेंट या एडेड प्राइमरी स्कूल में सबमिट करें डिस्क्रेशनरी प्लेस के लिए। जो पेरेंट्स प्राइमरी 1 एडमिशन ई प्लेटफॉर्म यूजर्स हैं और अपना अकाउंट IM स्मार्ट प्लस से लिंक किया है, वो 17 से 25 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एजुकेशन ब्यूरो के प्रेस रिलीजेस और POA वेबसाइट चेक कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो एजुकेशन ब्यूरो के स्कूल प्लेसेस एलोकेशन सेक्शन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 2832-7700। ओके, बढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर। ये है जी सर्विकल रिसीव रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग। हांगकांग में महिलाओं में सर्विकल कैंसर बहुत कॉमन है। रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। अगर आपकी उम्र 25 से 64 साल के बीच है और सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है तो रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग जरूर करवाइए। बहुत सी महिलाएं जिनको HPV वायरस या HPV वायरस है या कैंसर शुरुआती स्टेज में है, उनको कोई लक्षण नहीं दिखते। याद रखें, चाहे कोई लक्षण ना हो, HPV वैक्सीन लगा हो या मेनोपॉज हो चुका हो, तब भी स्क्रीनिंग करवानी बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग करवाने के लिए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स, फैमिली डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या NGOs के पास आप जा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में बुकिंग भी कर सकते हैं आप। नंबर है 3166-6631। जनवरी 2026 से वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स में HPV सेल्फ सैंपलिंग की सुविधा शुरू हो चुकी है। हांगकांग आइलैंड का नंबर है 2855-1333, कालून का हॉटलाइन है 2855-1222, न्यू टेरिटरीज का हॉटलाइन है 2851-1722। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.cervicalscreening.gov.hk। अपना ख्याल रखें, रेगुलर स्क्रीनिंग करवाएं। ओके, बढ़ते हैं जी हमारे अगले अनाउंसमेंट पर। दिस इज हेल्थ टिप्स फॉर प्रिवेंटिंग हीट स्ट्रोक। सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन याद दिलाता है, बहुत गर्मी में हीट एक्सॉस्टन और हीट स्ट्रोक से बचिए। सेफ रहने के लिए रेगुलर पानी पिए, कैफीन और अल्कोहल से बचे, हल्का और ढीला कपड़ा पहने, हवादार या एयर कंडीशनड जगह में रहे, बाहर ज्यादा मेहनत वाला काम मत करें, आउटडोर एक्टिविटीज सुबह या शाम को प्लान करें, आउटडोर वर्कर्स रेगुलर ब्रेक लें और छांव में आराम करें। बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और क्रॉनिक बीमारी वाले लोग ज्यादा केयरफुल रहें। बच्चों को कभी भी बंद गाड़ी में अकेला मत छोड़ें। यूवी इंडेक्स हाई हो तो सीधा धूप से बचें। SPF 30 या उससे ऊपर सनस्क्रीन लगाएं। यूवी ब्लॉकिंग सनग्लासेस पहने और छांव में रहे। अगर चक्कर आए, सिर दर्द हो तो और उल्टी जैसे फील हो या कंफ्यूजन हो तो तुरंत का आराम करें और डॉक्टर से मिलें। गर्मी में अलर्ट रहें, कूल रहें और अपना ख्याल रखें। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.chp.gov.hk। ओके, बढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर। दिस इज जॉब फेयर टू बी हेल्ड ऑन 17 सितंबर 2026। लेबर डिपार्टमेंट एक इंक्लूसिव जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है एथनिक माइनॉरिटीज के लिए। तारीख है 17 सितंबर 2026। टाइम दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक। जगह चिनवान जॉब सेंटर। 3 कंपनीज शंग्रिला होटल कावलून, CCG प्रॉपर्टी सर्विसेज और 10 सर्विस हांगकांग लगभग 100 से ज्यादा जॉब्स ऑफर कर रहे हैं। पोजीशंस हैं जैसे ऑन साइट टेक्नीशियन, कस्टमर सर्विस एम्बेसडर, असिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफिसर, क्लीनर, सिक्योरिटी।